किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति
1: योर नंबर वन द वन एंड ओनली हिंदू रेडियो स्टेशन रेडियो जागृति 102.7 FM.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Looking for unbeatable bargains and authentic Indian vibes? Fab India Expo in Trigonus is your spot. Step into Fab India and discover a world of colors, flavors, and fun.

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओ, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

प्रेम से मनुष्या वरदाम चंद्र की जय श्री पवन पुत्र हनुमान की जय माय फ्रेंड्स अस गोस्वामी संत तुलसीदास कंटिन्यूड ही स्टेटेड